चूंकि आज का दिन इतिहास को याद करने का है, तो क्यों ना हम अपने इस खूबसूरत ट्रायंगल क्षेत्र के इतिहास पर भी एक नज़र डालें। हमारे ये नॉर्थ कैरोलिना का आर्कटिक क्षेत्र हमेशा से ही केवल टेक्निक और नौकरियों का हब नहीं रहा है, बल्कि इसका अपना एक बेहद दिलचस्प ट्रेडिशनल अतीत भी रहा है। आज के ही दिन हमारे इस लोकल कम्युनिटी के इतिहास से जुड़ा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर सामने आया है, जो ये दर्शाता है कि कैसे दशकों पहले कुछ दूरदर्शी लोगों ने मिलकर इस दलदली और जंगली इलाकों की दुनिया के लिए एक काम किया है और सबसे बड़े रिसर्च पार्क में इसे बदल दिया है। अगर आप हमारे इस लोकल ट्रायंगल क्षेत्र के पुराने दौर, इसके ऐतिहासिक विकास और पुराने समाज की अनसुनी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको जुड़े रहना है रेडियो नायरा के साथ। एंड मैं ये कह रहा था कि आज का दिन वाकई में इतना फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग है कि आज़ादी का ये दिन हमेशा ही जैसे जैसे आता है वैसे वैसे एक नई हैप्पीनेस जीवन में लेके आता है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड आजादी का रंग रेडियो नायरा के संग आप एंजॉय कर रहे हैं। रैली के ऐतिहासिक मॉडफोर्ड पड़ोस से एक बेहद खूबसूरत एंड बहुत दिल को छू लेने वाली खबर आ रही है। लगभग एक सदी पुराना और सालों से बंद पड़ा ऐतिहासिक गैबल्स मोटल अगले महीने एक बार फिर से पूरी भव्यता के साथ जनता के लिए खुलने जा रहा है। ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित हो चुकी हमारी स्थानीय संगीतकार ट्रिप्ट मैरिट और उनके साथ डेवलपर्स की एक बेहतरीन टीम ने मिलकर इस पुरानी जर्जर इमारत को एक नया जीवन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसके पुराने विंटेज लुक को बरकरार रखेंगे और इसे आधुनिक सुविधाओं में जो है वो बदल दिया जाएगा, तब्दील किया जाएगा, जो अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। इस मोटल की पूरी जीर्णोद्वार यात्रा, इसके पीछे की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व जो है वो कम नहीं होने देंगे, बल्कि इसे तब्दील कर देंगे मॉडर्न इम्यूनिटी मॉडर्न चीज़ों के साथ। इन

आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर बना नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, साथ से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। अगर आप हमारे आरटीपी क्षेत्र में कोई छोटा या बड़ा बिजनेस चलाते हैं या फिर आप एक कॉर्पोरेट लीडर है जो नेटवर्किंग और नए बिजनेस की आइडियाज तलाश करते रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है। डाउनटाउन रैली अलायंस आगामी 26 अगस्त को एक बहुत बड़ा बिजनेस लीडरशिप समिट आयोजित करने जा रहा है। इस समिट में शहर के बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स, देन बहुत बड़े व्यापारी शामिल होने वाले हैं और आर्थिक नीतियों पर ये चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी इस समिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके स्केड्यूल को देखना चाहते हैं, अपनी सीट अगर बुक करना चाहते हैं, तो आप तुरंत डाउनटाउन रैली अलायंस ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में करी जाएंगी, जहां टिकटों की बुकिंग और वक्ताओं की पूरी जानकारी विस्तार से शेयर की गई है। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो।

कैसे चल रहा है आपका वीकेंड? चूंकि आज शनिवार की शाम है और कल से जो है मतलब कल से तो वीकेंड शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार, बच्चों या दोस्तों के साथ बाहर जाने का कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहे हैं। इस वीकेंड डाउनटाउन रैली में कई तरह के लाइव कॉन्सर्ट, फूड फेस्टिवल और आर्ट एग्जीबिशन होने जा रहे हैं जो आपकी छुट्टियों को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज है इस वीकेंड पर कहाँ जाए और कौन से इवेंट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे और आपके लिए मुश्किल जो है वो बढ़ रही है, तो उसे आसान करने के लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। आप सीधे डाउनटाउन रैली अलायंस वीकेंड गाइड पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ समय, वेन्यू और पार्किंग से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी दी गई है, ताकि आपका वीकेंड बिना किसी परेशानी से शानदार सेलिब्रेट कर पाओ आप। एंड कैसे चल रहे हैं आपकी प्लानिंग? आपकी भी बचपन की अगर कुछ याद है इंडिपेंडेंस डे को लेकर, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती है। जिसकी याद रहेंगी सबसे ज़्यादा अच्छी, उसे मैं डेफिनेटली ऑन एयर लेकर आऊँगा। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा है

जहाँ सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतना कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इस अगली खबर से लगा सकते हैं। हाल ही में वेक फॉरेस्ट रोड और कैपिटल बुलेवार्ड के व्यस्त चौराहे के पास दो कारों के बीच एक बेहद भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनमें से एक जीप पूरी तरह असंतुलित हो गई और डिवाइडर को पार करते हुए सीधे सड़क के किनारे बनी एक टायर की दुकान के दीवार और कांच तोड़कर अंदर जा घुसी। इस हादसे के बाद वहां काफी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियां के परकच्छे उड़ गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की जान इस हादसे के दौरान गई नहीं, लेकिन कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। इस क्रैश की लाइव तस्वीरें एंड पुलिस की शुरुआती जांच और ट्रैफिक डायवर्जन की पूरी जानकारी जो है वो समेटना चल रहा है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि गाड़ी अगर आपकी नियंत्रण में है, गाड़ी की रफ्तार अगर आपके नियंत्रण में है, तो कौन सी भी परिस्थिति में आपकी गाड़ी जो है वो कंट्रोल करी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी गाड़ी की रफ्तार संतुलित होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि है ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। एंजॉय।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स एंड बीती रात हमारे इलाकों की सड़कों पर एक फिल्मी नज़ारा देखने को मिला, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। वेक फॉरेस्ट पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया। यह मतलब ऐसा हुआ कि हाई स्पीड चेस कई मीलों तक चलता रहा और आखिरकार धर्म की सीमा में प्रवेश करने के बाद संदिग्ध की कार पूरी तरह अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में संदिग्धों को गंभीर चोटें आई और उसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। अस्पताल में जाना गया एंड उसके बाद अस्पताल वो चले गए। इस पूरी घटना ने सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाल दी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली पुलिस चेज और आरोपी के आपराधिक बैकग्राउंड को जो है वो देखा जा रहा है, परखा जा रहा है एंड क्या था एक्चुअल में, इसकी इन्फॉर्मेशन भी जुटी जा रही है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आई विल लेट यू नो। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिए।

आज फिल्मी दुनिया में सिर्फ बधाइयां ही नहीं बल्कि कई बड़ी फिल्मों के ऐलान, कुछ इनसाइड स्टोरीज और कुछ ऐसी चौंकाने वाले खबरें भी आई है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए अपने कानों का वॉल्यूम जो है अरे सॉरी अपने रेडियो का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा अप कर दीजिए एंड सुनते हैं बॉलीवुड की कुछ गपशप। लेकिन बॉलीवुड की गपशप शुरू करने से पहले एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा नाइट्स एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है, सो एंजॉय करते हैं।

पाटोड़ी के नवाब सैफ अली खान से जुड़ी है। स्वतंत्रता दिवस के एक बेहद खास टीवी एपिसोड जय जवान में सैफ अली खान ने शिरकत की, जहां उन्होंने सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों से बातचीत की। इस दौरान सैफ ने अपने घर का एक बेहद निजी और भावुक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके दो छोटे बच्चे यानी तैमूर और जय अब जब भी टीवी पर या खबरों पर युद्ध और लड़ाइयों के बारे में सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मासूमियत से पूछते हैं कि क्या हमारे देश पर भी कोई हमला होगा। इस पर सैफ एक पिता के तौर पर बस उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं कि बच्चों, जब तक हमारी भारतीय सेना के जाबाज जवान सीमान पर मुस्तैद खड़े हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। सैफ की इस प्यारी और देशभक्ति से भरी कहानी को हमने आज सुना है एंड सच में हमारे जवान सीमा पे तैनात है, इसलिए हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एक सलाम तो बनता है हमारे भारतीय जवानों को, जय हिंद जय भारत।

Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

अगली खबर है रणवीर सिंह के फैन के लिए। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली बेहद इंपॉर्टेंट जॉम्बी थ्रिलर फिल्म प्रलय को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। पहले इस फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत लोकेशंस पर होने वाली थी, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगले महीने सितंबर से इस फिल्म का एक बहुत बड़ा सेट मुंबई में ही लगाया जा रहा है, जहाँ फिल्म के सबसे मुख्य हिस्सों की शूटिंग की जाएगी। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि रणवीर सिंह इस फिल्म का काम जल्दी से खत्म करके एक लंबा पैटर्निटी लीव लेना चाहते हैं, ताकि वो अपने पूरे परिवार को समय दे सके। ऑफ कोर्स यार, परिवार के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। आजकल के इस कंपटीशन के युग में सब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि परिवार को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एंड इसके मेकर्स और रणवीर सिंह ने इस नए अवतार से जुड़ी हर एक इनसाइड स्टोरी हमें बताई है, एंड मैं जल्द ही क्या होने वाला है आगे आपके साथ शेयर करूंगा। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

के लिए एक और बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बार फिर से एक बेहद अनोखी डार्क फैंटेसी थ्रिलर फिल्म को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हैवान। ये फिल्म इसी साल 11 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है एंड पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सैफ अली खान एक बेहद चुनौतीपूर्ण रोल में नजर आने वाले हैं, जहां वो एक अलग ही, मैं मतलब नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये सस्पेंस है एंड ठीक है बताई देता हूँ, जहां वो नेत्रहीन मार्शल आर्टिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार यानी इस फिल्म में कोई दूसरा हीरो नहीं है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की जोड़ी जो है वो बनने वाली है एंड अक्षय कुमार खूंखार विलेन के रोल में यहाँ पे नजर आएंगे एंड दोनों मुकाबला करते नजर आएंगे। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर से एंड एंजॉय कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो नायरा को। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, एंजॉय कर

जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। संपूर्ण विश्व आज सेलिब्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंस डे भारत का। 15 अगस्त का आज दिन है एंड काफ़ी ये दिन भावुक भी रहता है, एनर्जेटिक भी रहता है, वीरों को याद करने का भी ये दिन होता है। और याद है 90s के की रिलेट कर पाएंगे, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो दूरदर्शन पर देशभक्ति पर आधारित फिल्में आती थी एंड वो फिल्मों का क्रेज़ कितने भी बार देखो तो कभी कम नहीं हुआ। आज भी अगर दूरदर्शन पर कोई फिल्म ऐसी आती है तो ट्रस्ट मी 90s के कीड उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो देखते ही रहेंगे। भला ही एक एक सीन, एक एक गाने का वर्ड याद हो, लेकिन फिल्म देखना काफ़ी ज़रूरी है। 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर, निर्वाणा नाइट्स ये शो पर। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा। गुड नाइट, शब खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

संभल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

Hi everyone, this is Mohit Lalwani. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा. Subscribe to the channel. नीचे एक bell icon बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली videos हैं वो आपको मिलती रहेंगी. ऐसे प्यार करते रहिए.

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन। सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास। दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंस।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Madura 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Dial up ekho jao Pakka Desi.
2: फ्लाइट अफरोज ताज और जॉन कॉलवेल के साथ तैयार है।
3: एवरी संडे 10 to 12 नून लेट्स फ्लाई विद गीत बाजार।

साउथ एशिया रेडियो 10 टू 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: प्यारा है वतन, अहले वतन जिसके प्यारे हों। समात फरमाएं कि प्यारा है वतन, अहले वतन जिसके प्यारे हों, और ऐसा नहीं तो ऐसा करें कि सब हमारे हों। खातिनों हजरात, क्या लाजवाब नगमा आपने समात फरमाया, और बड़ी अच्छी फरमाइश थी मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की। 15 अगस्त सबको मुबारक हो, और साथ साथ 14 अगस्त भी सबको, बल्कि आई वुड से 14 अगस्त एंड 15 अगस्त दोनों मुबारक हो। वी आर योर होस्ट सफरोज ताज जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एंड दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: So 14 August and 15 August, dono aapko mubarak ho. 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का, आप समझते ही हैं कि आज़ादी का दिन, और 15 अगस्त जैसे कि आप समझते ही हैं हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन। कई साल पहली पुरानी बात मुझे याद आ रही है कि एक बार ऐसा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने प्लान किया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना स्वतंत्र दिवस या योम आज़ादी एक साथ मनाएं। कैसे?
1: Yes, Safarji, I actually remember. I think it was 2010, and the concert was held on the Wagah border between India and Pakistan. And on the one side, it was the Vadali brothers performing, and on the other side, it was Rahat Fateh Ali Khan.
0: बाकायदे एक इधर स्टेज बनाया गया, एक इधर बनाया गया, और 14 तारीख की रात को वो प्रोग्राम शुरू हुआ, और 12 बजे के बाद और एक और दो, और फिर सुबह तक 15 अगस्त तक वो प्रोग्राम चलता रहा। हजारों करोड़ों लोग आए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस अगेन समहाउ, अगर ऐसा फिर हो जाए तो क्या बात है। तो 15 अगस्त के मौके पर एक और नगमा भी भेजा है हमारे दोस्त ने, तो अब आप समात फरमाएं जो मैं दिल से आपके पास पहुंचाना चाहता था, कि माना कि दिन खराब था कल का तो भूल जा। अरे माजी क्या है, कुछ नहीं है, अतीत भूल जाओ उसको। माना कि दिन खराब था कल का तो भूल जा, और कल की वजह से आज का दिन क्यों खराब हो। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

धवन का कलाम था, मौसीकी थी उषा खन्ना की, वाह। और फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी। 1960 की ये फिल्म थी। मुकेश की आवाज में नगमा शुरू हुआ था मोहतरम जनाब चरणजीत लालियन मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर, और अगली फरमाइश समृद्धि ठाकुर साहिबा की मुंतजर है आपके लिए। इतना खूबसूरत रोमांटिक नगमा आपने सुना है कि बस दिल खुश हो जाता है, और मैं कहता हूं मरकर भी दिखा देंगे तेरे चाहने वाले। अरे मरकर भी दिखा देंगे तेरे चाहने वाले, मरना कोई जीने से बड़ा काम नहीं है। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

0: मैंने किया सिंगार तो पछता रहा हूं मैं। समाज फरमाइए हुजूर वाला कि मैंने किया सिंगार तो पछता रहा हूं मैं। क्यों पछता रहे हैं? मैंने किया सिंगार तो पछता रहा हूं मैं, अब तो बिना सिंगार न जा पा रहा हूं मैं। आनंद बख्शी का कलाम, आरडी बर्मन की मौसीकी, दी ट्रेन 1970 का ये नगमा था। फिल्म बड़ी अच्छी थी, इसमें शायद नंदा वगैरह वगैरह या लता मंगेशकर की आवाज़ में। मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश सनाकों पर हमेशा की तरह। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश, एंड वी आर योर होस्ट अफरोज़ता जान कॉर्वेल एंड रवि चिरीकुड़ी। इन केस आप हमें भूल जाएं तो याद रखना।
1: And Afroz G, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And Afroz G. Usha Bajpai would like to remind our listeners that the amazing experience of Virangana is coming up just in less than 2 weeks on August 30th. A powerful story of courage live on stage. Brought to you by Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's bold and fearless women warriors. The featured women from India's history are Panna Dhai, Rani Chennamma, Mai Bhago, and Neera Arya. So Virangana celebrates courage, sacrifice, and the spirit of women who shaped history. This is coming up Sunday, August 30th at 3 p.m. in Stewart Theater at NC State. Tickets are limited. You can get your tickets on the Eventbrite website, which is 4de.eventbrite.com, and Bright is spelled B-R-I-T-E. See you there.
0: मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा, अगली फरमाइश भी समाप्त फरमाइए, और साथ साथ ये फरीदा शेख साहिबा की फरमाइश भी है 15 अगस्त के मौके पर। अब छोड़ दी वो धरती सोना जो उगलती थी, अरे अब छोड़ दी वो धरती सोना जो उगलती थी, लो याद आ रही है अपनी ही तो गलती थी। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

0: हालांकि वतन छोड़ के आकाश जा बसे। अरे हालांकि वतन छोड़ के आकाश जा बसे, पछता रहे हैं देख के तारों के जलजले। अभी आपने मसरूर अनवर का कलाम सुना, मौसीकी थी सोहेल राणा की, गुलूकारा शहनाज बेगम की आवाज़, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी। वो बांग्लादेश की गुलूकारा मानी जाती थी एक ज़माने में, और आज भी लोग बांग्लादेश के उन्हें याद रखते हैं। कमाल अहमद साहब की फरमाइश।
1: एंड फरोज जी, सारंद पंडित कहती हैं कि किशोर कुमार वुड हैव बीन 97 इयर्स ओल्ड ऑन अगस्त 4th, अनफॉर्चूनेटली ही डिड पास अवे बैक इन 1985।
0: मोहतरमा सारंदा पंडित साहिबा ने किशोर कुमार की बर्थडे के मौके पर एक और प्यारा नगमा भेजा है। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, अरे जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा,

भी मिल जाओ घड़ी भर तो ये गम होता, तुम भी मिल जाओ घड़ी भर तो ये गम होता, इस घड़ी का सफर नहीं गुजरा। गुलजार का कलाम, आर डी बर्मन की मौसीकी, किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म किनारा 1977 की ये फिल्म थी और मोहतरमा आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, यानी के सारंदा पांडे साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश का। दामोदर पांडे साहब, आपका जवाब नहीं हुजूर वाला कि क्या नगमा आप लेकर आए हैं, और वो भी 15 अगस्त के मौके पर। क्या खूबसूरत नगमा है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले एन सुधा मल्होत्रा की आवाज़ें। फिल्म का नाम वाओ, दीदी 1959 की ये फिल्म थी। वाह, भारत में एकता या वो आपस में फूट हो, अरे भारत में एकता या वो आपस में फूट हो, सच्चाई हो जनता की तो नेता का झूठ हो। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

0: जमाना।
1: मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया था।
2: दूर के ढोल सुहाने प्यारे, आपने ये तो कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने। दूर के ढोल सुहाने प्यारे, हमने सुने हैं जाकर सारे। ढोल फटा था और बजा कनस्तर, और सभी बजैया छुरी कटारे। आपने जो नगमा भी समाप्त फरमाया, साहिर लुधियानवी का कलाम था, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दत्ता की मौसीकी थी, जैसा पहले किया जा चुका है, 1959 की दीदी फिल्म थी, मोहम्मद रफी और आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों के साथ, दामोदर पांडे की फरमाइश पर, बनारस रामनगर से। और अब नीना गंगोली की फरमाइश की बारी है। नीना गंगोली कहती हैं, माँ को प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है? मैं तो कहता हूँ बहुत बुरी बात क्या, बहुत अच्छी बात है, बल्कि उससे भी अच्छी बात है। माँ ने जितने जुल्म सहे हैं उतने धरती माँ ने भी। अरे माँ ने जितने जुल्म सहे हैं उतने धरती माँ ने भी। और कर सलाम तू मुल्क और माँ को, गरिये बात न माने भी।

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Myra
1: mein kho jao Pakka Desi. Geek Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Chicago, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Jarzal to Sharjah, Florida to Murodabad.
2: This is Geek Bazaar Radio Naira ki peshkash. Aapki khidmat mein hum hazir hain 10 se 12 subah 10 se 12 sham. We are your hosts Afrosta Jan Corwell and Ravi Chirikudi. Hamesha ki tarah khatin hazrat main aapki khidmat mein ek sher pesh karta hoon dusre hisse mein dakhil hone ke liye aur main kehta hoon ki bada hi khoobsurat khwab ek dekha tha kal maine. अरे बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब एक देखा था कल मैंने, वो आए ख्वाब में बोले चलो हम फिर से मिल जाएं।
3: You are listening to Geek Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power, also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
4: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
2: तो पहले मैं कहूंगा कि 14 तारीख को पाकिस्तान का योम आज़ादी आपको मुबारक हो और फिर मैं कहूंगा सब लोगों को 15 अगस्त मुबारक हो यानी स्वतंत्र दिवस ऑफ इंडिया। और मैं ये भी याद दिला दूं कि हमने कुछ फरमाइशों के यकजा करके रखे हुए हैं, एक ही तरह के तकरीबन एक ही तरह के नगमे हैं। बहुत से नगमे ऐसे हैं, इतने खूबसूरत हैं कि महसूस हो जाता है साफ कि ये एक नाव में गाए गए हैं, एक कश्ती में गाए गए हैं। तो जनाबे वाला मैं एक बात और कह दूं, वो ये कि सभी शायरों ने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है। जैसे इकबाल हैं, उन्होंने लिखा हम बचपन में तैयार किया था कि नौके सैयार मन तेज तरक गामजन मंजिले मां दूर नीस्त। नौका कहते हैं आप समझते हैं संस्कृत में नौका, जैसे कहते हैं नाव यानी क्या। नौके सैयार मन तेज तरक गामजन मंजिल मां दूर नीस्त मंजिल मां दूर नीस्त।
4: सो फरोज जी, दामोदर पांडे की फरमाइश जो है, इन्होंने याद दिलाया कि ये नगमा एक्चुअली दो अलग अलग फिल्मों की है, लेकिन दो अलग अलग फिल्में जो हैं एक ही फिल्म है जो दो बार बनी थी, एक बार इंडिया में और एक बार पाकिस्तान में। इंडिया में जागृति बनी थी 1954 और दूसरी बार बेदारी बनी थी 1956। तो तर्ज वो ये, आवाज़ें अलग अलग, आवाज़ जागृति में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और बेदारी में सलीम रजा की आवाज़ है, बट द लिरिक्स आर बेसिकली द सेम, सेम सेंटिमेंट, सेम मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने दामोदर पांडे की फरमाइश को सर आंखों पर रख के हमने थोड़ा सा मिक्स कराए दोनों गानों को, तो आपको ज़रूर रिजल्ट पसंद आएगा।
2: तो समझ माइए दामोदर पांडे साहब, फाइनली आपकी फरमाइश, ये दौर है बच्चों का ही मुल्क है। अरे ये दौर है बच्चों का मुल्क है, अब जैन जी के हाथों है डूबती ये कश्ती।
5: यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

0: तो रखना मेरे पति।
1: मुश्किल से निकाली है मझधार से ये कश्ती, अरे मुश्किल से निकाली है मझधार से ये कश्ती, अब बादबां संभालो वापस न चली जाए।

0: लहरों के ओ राजा हमें तू पार लगा दे। अरे लहरों के ओ राजा हमें तू पार लगा दे। और कब से खड़ी है पार जिसके हैं हम शहजादे।
1: ओरे माजी

बादमां खुलने से पहले का इशारा देखना, परवीन शाकिर का ये शेर है। अरे बादमां खुलने से पहले का इशारा देखना, और मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना।

प्यार भी क्या प्यार है जिसकी के कश्ती पार है। अरे प्यार भी क्या प्यार है जिसकी के कश्ती पार है, और प्यार की कश्ती तो भाई डूबे तभी तो प्यार है। यू आर लिसनिंग टू गीत बजार।

गंगा तीर है राम राज तो जमुना तीर है ताज। गंगा तीर है राम राज तो जमुना तीर है ताज। और एक मुल्क में दो महराज मिलके बने समाज।

सुनते हैं कि हैं चांद पे पत्थर के देवता, समाप्त फरमाइएगा कि सुनते हैं कि हैं चांद पे पत्थर के देवता, आओ चलें कि मोम करें प्यार से उन्हें।

दो दिल को जानने में कुछ वक्त लगेगा। समझ फरमाइए, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा कि दो दिल को जानने में कुछ वक्त तो लगेगा, दो बोल के पढ़ने से जादू नहीं होता।

हुए दिल को मेरे लौटा रहे हैं आप। अरे टूटे हुए दिल को मेरे लौटा रहे हैं आप। पहले ही कह चुका था ये किसी काम का नहीं।

0: समोड़ा।
1: अरे कहता न था कि चांद की अपनी जुबान है, समातरमाए कि कहता न था कि चांद की अपनी जुबान है, और तुम सामने उसके सभी बातें ही कह गए।

ये मेरी दास्तान पे किसने कर्म किया। समाज फरमाइए, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन इससे पहले मैं भूल जाऊं, मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर ये नगमा पेश किया जा रहा है। ये मेरी दास्तान पे किसने कर्म किया, अरे ये मेरी दास्तान पे किसने कर्म किया, जिसका शुरू हुआ नहीं पहले खत्म किया।

0: इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास। दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉनवेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी पक्का लोका.

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Ban. Ban. Bow. Yeah.
1: भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा.
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 14

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?